0: ताज तेरा गुफन नशो कटोरा विसकीम एंडिंग हुरी फिर ये मी जिम्मा इसमी हकीम एबा आदे फोन और फी हूँ मैं कोले हेलो एक वो है आमिदनी ओके ए दांजे हिच
1: पढ़ को बना गंदे तीन फोटो है
0: मिकोलो ऐ महुरे वे करनो है

0: Oh, हाँ, तो मोड़े बार अफारी तेंगे
1: ऑफ कोर्स
0: एक थी लड़की अंडनी को हिसाब देकर
1: तानिया कॉन्सर्ट का
0: वाह वाह वाह वाह ओके

0: למה לקוף בהו? למה?
1: דיווה היא FM, נו עדיה עקם מגהרץ.
2: Hima bihin rakka terevum.
3: Hima bihi vaccine dedos hamakurum.
2: Sabon lagin addovum.
3: Kessa kimbi alarnama angayar nefer niva kurum.
2: Hima bihi ge evves alamaten hurinama mask elum.
3: Adi hima bihi ge alamaten hurinama ekaherivum.
2: Hima bihi ge alamate fenijanama lasnukurava sihhi farwa hodava.
4: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
5: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल हालो में देड़ा ही है
4: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में के दक काफुं अता
6: मुन्ना ती है बरो को वेंडा हिं कमेन ने अफन ती कं कोलन ना
5: ती को दुं हाउ दा ही रंगल ले ती हे मुन्ना ए कही आ हाल बला फे मुन्ना सकां कं को देन ना हे ती मुन्ना वरा उपावे

0: नो दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम मगरिब नमाद वक्त
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: उत्साह से। लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश गिंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाळी ऐसा क्या वाईट तू जाऊन उठ न बिट न लाव नी की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देगा तू इधर कच्चे तू
2: हाँ वो अधि रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के निस्ते आ दिरु में
0: कोमे होम तो है के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधि बुद्ध दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
4: वर्जन 2.0
5: Version 2.0

0: Game on!
1: Raya, kau baki ni?
2: Marah ranggalo.
1: Ani kaya sama game kau lagi game ni?
2: Yes, okay.
1: Hanya baru tu aku phone kau no game tak kaya si.
2: Ah, hanya I failed so bad.
1: Me redeem kuran lebih chance ni, ke?
2: Okay.
1: Me far eh me mevis mih kaya kau no ni game ni kiye. Hama sida Raya wadu kuran je ni Raya. Ranggalo.
2: Hanya malu ane.
1: Guarantee kau, best tu. Inam si fam me orang ni ke? Ani me shahude amu ko inam di genta kuriya dana me inam gendam mana me.
2: Okay.
1: Hingga fashion muka kurin deng. Emme furta maraya shahu kollan hama me show yangar nama kome farnane kaya sam ko kura sual ta me raya ge fashion maki ko bato. Kya hisab kumba lava kyu muge dair den shahu handa hure hama me emme furta ma ki lava toge tereng low bihur ei vara boda belun teringe me duke hun teringe me duka mag bolve geng dia lava me lava ki deng. Efa raya deng kuroko. Loki wefa, anek kawis mihar raya agama sekitar tang hama belun teri nai hun teri nado mu fenno umidani hama bara. Kamiab love kyun teri kuri aramungan kamiab love kyun teri kuto kasha hosipak.
2: Thank you so much.
1: Raya inge introduction, inge raya ag introduction nari amil de tip.
2: Tumre raya fashion ogo. Hama kulle ka dem furita ma media net series. Taka lava ki and then fashion ni deng
1: ek furtam ane offer dini nu ne furtam opportunity dini libuni ki ne
2: dark rain un kanne gira libuni furtam opportunity hama moga para tu ya
1: o e shahu eliuni eti
2: really
1: yes
2: that's how I got me ane fashion gang aro like furtam fashion ni ego tang assu
1: हमें डार्क रेन के फैशनमार नेमो मुंग फुरतम राया के फैशन में
2: इधर
1: रंगलो रंगलो मैं एक कुरिंग आने हैं हम मैं वीडियो लवतोग हर कहते रहे फोहरे
2: यस कोम्स वाले का
1: एक ही नहीं नहीं इंगा बेही साबुन फैशनमा बोकेटो जाए को तो फुरतम मासे के कुरम फैशी इज अ सिंगर
2: बोकेटो नो शामिल शामिल ege fahun ten tvm mabves unnan me
1: ek
2: show taku ga ya den war fahun den ne fenan shamil like come shop pevs
1: den edan fahun asiketa
2: fahun ga mas ekal gotak den
1: den inga furta maraya ge me furta malava kyumu ge show ge kam me ofe de gen a hisab ke wahaka dakala ma emme furta ma Ranga, timan band me lava kia she, timan ne lava kie ye, nune ma meeha ko raya kaya raya sa raya, vare reach e lava kia bhinga she, mubara tega baveri waan. E hisaab bhinga che hilama. Umurun gaga ka kia hisaab ega me lava kiyo ma nune ya lava ege khanka ma shaugari ka ufe duni.
2: Raya, hiwa ni hama, raya 3 years unfe shikeng karnenge. I grew up hama, vare raya gega sabadu lava jahane, menta mihim vare. But a musical lobby kura family erai genani den ane kude ru surevas hama miha tanang hama lava kiyamun ai so then mamma boda push kure do raya me singing competitions ta ga baveri wan then mamma push ko genne mi hisaban a devuni assu do ei raya bunane tsake
1: then e fo law mubarat ta kum mi feshigen gosse den mi ek lobby hu ra mi fadama sekket ta den mi raya ge mi kum mis madahai shahu handam ve tvm ga kiya de madahai hama varam varam magbol ga gen de tuttu ku dinge me du ga varab varab bodan hama viral ve gen dia madahai nga madahai ke e fo den raya ge filmi masekket ta ka video law ta mi annam feshi mi kina vani asu mi hama gamis varab ginabai ge hi ter kama aiki ga nuni varab baur fans sunge loe ba aiki ga mi haruti hori hisaban aate fo hunnani era mi hara ko ba raya ge fans sun kina huri taru hi baitse
2: apadus वरस सपोर्ट लिबे फ्रेंड्स उन फारा तुम दो दिन ऐ राय बदुस वरस ग्रेटफुल वा कम है दिन राय सो गबूल विस नो कुरे वे हम मिसा बंगा देवे ने कम कक कैरी अगर दो दिन असो वरस ग्रेटफुल मिसा बंगा देवे ने वो
1: फिल्म में मस्से के तकबाला ला राय के हम वारा बैवर रेती लावत के ऐसे बोरे कुरियंग अन्नंगे बहुरी मी आदि कुरियंग अन्नंगे फिल्म देवी के समर आया के लावेंगे बे मी फिल्मी मसे के तक मी लाव किया दिन फेशी हिसाब उनकी न वरनी मी ऑडियंस के फीडबैक आए थे
2: वारा साले दें ऑडियंस पुरानी देवत्तर के ऑडियंस दिवे न दें हेट वे सन्ना न दें लोबी वे लिबे लिबे हमा हमा वारा गिनान दो दें
1: की ना सुमे दें हेट के वहाँ क्या मम्मी पढ़ा मैं ऑब्वियसली राय है बस ऐसा होना डर बट की ना ऐसे सर ऐसे टेको करने उन्हें ऐसे सर कुरी मत लानी की ना
2: कमेंट्स नो बाला नहीं हमारे नो फैलिया करने के रंगलो आने तो ऐ असु दें कमेंट्स बाला आगे दें ये खामा विस ना दें ओवरथिंक को दें ये बुरे मार रंगलो दें नो फैलिया तो एमएमएस बुनने नो बाला शे कमेंट्स एक हमें स्पाइफ़ फारु बेले बट ऐ त्या बदु इस पॉजिटिव करने के तो बाला नहीं तो हम
1: ಎಂಬಿ ರಾಯಾಗೆ ಮಿ ಫೆಶುಮ ರಾಯಾಗೆ ನಿಮುಮೆ ನುಬುಣಾನಿ ನಿಮುಂ ಅದಿ ವರ ಫಹತುಗ ಮತಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಹಮ ವರ ಕುರಿಯಾರಾಗೆ ಎಂದಾಣೆ ಮಿ ರಾಯಾಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ತೊಗೆ ತೆರೆಂ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ್ನ ಹಿಸಾಬಂಗ ಹಮ ವರ ರೀತಿ ಲವೆ ಕುನ್ ಶಹುಮೆ ಶೋ ಫಶಾಣಿ ಮಿ ತಿ ಲೋಬಿ ಹೂರು ಎಲವ ಇವ್ವಾಲ್ದಿ ಫಶಹುಮೆ ಬದ್ದ ಕೊಲ್ದಾಣ ಹಮ ವರ ಬ್ಯಾವ್ರಿಗೆ ಗೇಮ್ ತ ಕೊಳ ರೆಡಿ ದೋ ರಾಯ
2: ಎಸ್ ರೆಡಿ
1: ಮಿ ಫಾರ್ ಹಮ ಯಾಗಿಂದ
2: ಯಾಗಿಂ
1: ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಾಣಂದ
2: ಎಸ್
1: ಓಕೆ ರಾಯಾ ಕೀಗೆ ಶಹುಮ ಕುಡು ಕುಡು ಇರುಕ್ರಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬದ್ದ ಕೊಲ್ದಾಣ

0: 코피스.
1: 아, 코리아.
0: 하루 왜 다 1 미니트.
1: 1 미니트 누워야 돼.
0: 아까 Sharaf, Raya, Anita, Ding,
1: Nueveji. Raya, what a derco me de Mavido.
0: Oh no,
1: Nueng Hamavi, Nueng Hamavira Mivago, take me. What a gin of Fernandung about Maju, Fubu, and if only very film game with Nantakia in a Miss Visca.
0: I love
1: Mamma. Mifahar, then Ranga, go ahead, Nunging, and Nueng. Go ahead, Bunaka Berman. Even Raya wanted the Mihar can ask me for film the Bala Farnana Kahama.
0: Yes,
1: Emme Kamuda Fagetere him and any Raja Kum Farnano.
0: Hard war Azza was come Abadu Stoding, then Sharaf, then Azza Bahuri.
1: Okay, Kunka John Reg film take. Me anekati koren bodha balan kamu dani biruveri banuni comedy banuni lobby ge social awareness konka film take bodha raya kamu dani balala
0: raya kamu dani amuko horo
1: kamu dani
0: ya wara horo movies bala hebe
1: me ar me kuriyan wettanga misal ka film kun kulen chance libuni ora raya amille film I daire anukunna kama banma kon genre tajriba kollam beenu mani
0: ra beenu mani Horror movie. Yeah.
1: Kule hive ta film maneka.
0: Kule ane me chance libijiyam depending on the you know role I might consider hamada.
1: Consider ade kora. Edo ade agin comment no den. Eha shauk ver comment neng eda.
0: No den bala fa do inge.
1: Okay okay. Eme ma raje ke film me dai ra ga me hama me fahu ke tariu ga me release mung an gina film ta raya bala foria. Shahu amu ko horia premiere ges raya baddalwe. Gina premiere ta ga. Me emme fahu bala le un film to ge tereng emme kamuda film ka fahu ga ve kon film.
0: हाँ तो गुस्सा वाले कहती
1: वारा फंसे वाले वाले किन्ह मने जवाब
0: मागे बिटू के वेडिंग
1: अति वारा शाहू इन्हीं में बुनाए चलतींगे
0: नो वारा होल्सम वारा की है बुनाने ही हालाक हुए हम गैमस अति ही एंड नो है दिवे ही फिल्म कॉमेडी दिवे ही फिल्म में बाला फैहा वारा है वो नो है ने
1: हम गैमस
0: Oh,
1: okay.
0: Serious.
1: Eh, mama, ane hem buna kama vanam horror film kama des comedy film is balahi.
0: Yes, balahi ve huri ha me genre.
1: Ah, okay. Hemi mami raya vara nuba mi he carry gati boni timana vara shower ke bhote film ko le hama ko le atu e danenge. Vara mitna ge hun nati. Mi ar den mi azza ge vaha ka dakka life. Azza ge film to ge tere raya ang emme kama dani kom film me. Kama diye I kom film me.
0: नहीं बुरा नहीं 4426 है
1: 4426
0: वाला थाफा तो रोल है फैनी के अंदर याद जगे दो सो शी डिड हम रियली रियली गुड है फिल्म का
1: 4426 के लावत है किन्हें शाहू में ये लाइब्रेरी को है नमः समा मैं आज जगे वाले बैवर लावत है क्या भोरे आज जगे कॉम्मिस लावे हिंगा आडवा हालम
0: यस